0: ऐसे ही बोला काफी चलो 2-3 साल की मैं वैसे थैंक यू पे बता रहा था चाहूँगा आपके बता कौन सा मैं वैसे दिन पे 1 किलो बता रहा था बारे से कहीं मतलब और बाकी बारे में आया ना प्रशस्त मात्रा में पानी आ रही है पानी प्रशस्त मात्रा में और टेस्ट कर रहे हैं पांच में छोड़ सुखा सफा उबालो और छाए युक्त मैं जो कर रही थी उत्पादन से कर रही है तो इसमें से विशेष ख्याल रखने वाला है वैसे अन्य उत्पादन वाले से बस बस बस
1: बस बस बस बस सधैँ गर्दा अथवा मैले चाहिँ यहाँदेखि छुट्टा पनि हुन सक्छैन यस्तो यहाँले चाहिँ भन्ने कन्टेक्स्ट छ भने पनि
0: हुनसक्छ अब हामीले चाहिँ एक एकजना सबै दुईवटा प्रश्नहरू पठाइरहेको अवस्थामा छ त्यो हुँदै हुँदै पनि तपाईँलाई नै गरेको हजुरहरूले पनि कोसिस गर्नु अथवा

0: सारे आठ बजे सम्म उनीहरूले ₹7 मेगाहट पर दिया सुन्नु थियो 101.2 मेगाहट सुन्नु र रेडियो सिग्नल 105 मेगाहट सिग्नल पाँचबाट प्रसारण हुँदैछ।
1: नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रस्तुति

ईश्वरलाई नपसेपछि सुस्त जीवन पाए निशा रोग झट्ट भयो ध्यानी दिव्य जीवन खत्तम हुई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द गरी धुरापान मदिरा से दूर रही अनापना नियन्त्रण गरी आज निर्णयकारी जीवन अचार निशा रोग मसेपछि स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहितको जारी सन्देश।

0: लगन तो कड़ेगा और हर से कबीरा होता है वो ध्यान दीजिए समस्या के लगन
1: अब कार पता मछली खा सकला टाइल्स का पात माल मिगेरा आरा मछली शिकार वो फल फूल आयुक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जरूर फूट कम करी सर्टिफिकेट खराब

नहीं नजर पाएगा और अल्लाह प्रॉपर्टी जो है कुछ उद्योग नजर पाता है राशि इसका था जितने किस्म का अवसर मिलता और मैं दोस्तों हम लोग कंपनी जो है कुछ उद्योग गैस

0: पारिवारिक फोटो सहित को परिचय पहले कारोबार का साथ उपस्थित भैदे अनुरोध छ।
1: मिति 2083 9 गते शनिबार समय बिहान 8 बजे देखि बेलुका 5 बजेसम्म स्थान ओम प्यालेस धनगढी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढी कैलाली सम्पर्क नम्बर 0 91 5 20 283।

एफसीडीओ का सहयोग व संचालित वाइजर कार्यक्रम अंतर्गत यूके मेट ऑफिस को

0: नमस्कार मेरा नाम योजना चौधरी वास्तवी नगर पालिका प्रारंभ और पच्चीस जड़े कुछ उद्योग किसी का अवसर मिलता हूँ हम लोगों को और पच्चीस जड़े कुछ उद्योग इतिहास की ज्ञान सब प्रवासी
1: सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित का जारी संदेश

ऐसे कमियां पढ़ाई में ध्यान नहीं देने में समझ लेना पता मुझे बचक लाख काल का पात पाल गुड़ियारा तारा मच्छी शिकार फल फूल अलग युक्त खाना नियमित रूप में खाई जो छूट कर

होई सत्रित खाना खाई गयम सत्य करी धूमपान मदीना में से चुना रही तरफ नियंत्रण करी आज निर्णय काली जीवन हजरा निशान रोगों से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुवार सहकार स्वास्थ्य कार्य में बढ़ गया जनता संदेश।

उससे हमें मार बताएगा जी वो पुरान घर पीड़ा किया घर बना के एकदम घर बनौनी कटा भंडारा घर बनौनी खाना पीना यही बने सपने गिर गयी थे उससे मार बताएगा जी सपने गिर गयी थे तो ये पुराने कार्यक्रम के द्वारा खोल में एक सुखाना की सपना गीत से पुराने कार्यक्रम

0: नहीं, यही तो कुंजी तो नहीं, उम्र ही तो नहीं, सिद्धार्थ नहीं, तो ये तो मसला, तो जीते तो हमें देखते होंगे, मैंने मुंह के घर पर जाता है, हमारे कठिन की जी तो खुद ही खाई, नहीं तो मैंने थोड़ी भोगता है, तो ये तो मसला, तो जब उनके अपने कोई पेट नहीं, कोई मैंने मर्ज नहीं, कोई खाई नहीं, तो उसके करते करते जब उनकी उनके मराए थे, कभी तो लंबी उनके परिवार की होते हैं, तो भूत दिया था कि कोई गुहर के घर को पिता के घर को भूत दिया था जो कठिन को, तो उनके मैंने लंबी मराई की थी,
1: Thank you.

0: video, আমি এখানে একটা টপিক নিয়ে আসি, তোমরা যদি কোনো দরকারি কোরি তোমরা প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সফরে তোমরা কাজে নিয়ে যাবে সুতে আপনাদের জানে সকালে আমরা কি নিতে আসলে তাতে নিচ্ছি তাই নিয়ে কারণে স্টিপল পারলো কই তো ওই খবর প্রাপ্তি থেকে কোপরে কোপরে ওই কথা তো এটা চিন্তাই না
1: আমরা তো কাজ করবো
0: कठिन तो की मणि कोई सिखाई वो पढ़ाई तो मणि प्रसार को कई परी अपन अपन ज्ञान को विद्या भेद परी तो वही जैसी मणि मणि प्रसार करे परी ये मित्र आदि सुपर नदी तो ये सब आपके नए बनना का करके ये जो गुफा में क्यों नगर साथी में नगर राजा प्रेतन के द्वार खुलने का आदि गीत कविता चिपकी रखी सका कपूती वही तो पत्ता पत्ता के सुनाने और वही फूल के तुमने पता दियो तो मैं नाम रखे गाना प्रसारण कर दिया हो गिराए होना तो चुपकर किया था मैं सुखर चीज है वो प्रतिकार जेत मात्र में क्यों क्यों तने बटे तो आपकी चीज का को फिर करके आप उन्हें सिखा के प्रतिकार देना ये पता लगा हम तेरे के सुधर के सब कुछ समझे गले कत्तर दर्द भी तो करते कि जब आप उस चीज को बच्ची नहीं गले कत्तर दर्द भी तो करते कि जब आप उन्हें बटे ना पर तुम इसका से पहले मुख मेरे कार्यक्रम में जोड़े थे ना उनके बटे थे उनके नाम उठे ना बटे थे तो पहले ना उनको बटे हमार मैं वो जी था क्या ना पर बाढ़ पर दिन में पाई का वर्ड ना था मन पुसे वो का जो दिन में तो कहते थे पते रहते हैं पहले तो कार्यक्रम से तेरे आप सुखराम जो बेरी कब तक तुमने तो कब तुम पहले ना ओके जो तुम बटे थे पहले का खुद तुम पहले रहो कि मैंने हाल ही बक्सर चंचल दांत दें तो दें तो कि काटे ना कि इधर ही कारो इधर जो तुम पटे जाते हैं कतार होते कि तो प्रसन्न हरियाणा मकान की लाल मुद्र द्वार बा उन्हों बैठना करिया राजा ही कहता हो एक जो तो पटे जाते हैं खाते चाहते कि तो वो लीजिए सिंह जी जो सिंह मोटा रहता कुछ के लोग पटा के सिंह के जेब में क्यों नहीं क्यों जो करने पर देते हैं आज के जो मैं तक उधर तेरे को फोन के क्या आप बती तेरना तब पटे राम की सोच था वो तेरा ना पास के नगर पाली का तीन तक पक्का है वो जो से जो तो पटे रहते हैं तो राम की सोच के तब जो से जो करने पर देते हैं आज के मैं तक उधर तेरे राम की सोच को फोन के क्या आप बती तेरना तब पटे सिंह था वो तेरा ना पास के नगर पाली का क्या लक्षण तो से वो जो से जो पटे रहते हैं तो सिसिल के लिए तब जो से जो करने पर देते हैं आज के मैं तक उधर तेरे सिसिल को फोन के क्या आप बती तेरना तब पटे मिलन थारू एगन बाबा के नगर पालिका के रसूल तो से वो दूसरी जो पटे रहते तो मिलन के लिए तुम जो से जो जाने पाते तो आज के जो मैं कहूँ तो तेरा मिलन तो फोन के क्या ऊपर की तेरना तब पटे टिकर आगे थारू एगन बाबा के नगर पालिका के रसूल तो से वो दूसरी जो पटे रहते तो टिकर आगे के लिए तुम जो से जो जाने पाते तो आज के जो मैं कहूँ तो तेरा टिकर आगे तो फोन के क्या ऊपर की तेरना तब पटे करण थारू एगन बाबा के नगर पालिका के रसूल तो से वो दूसरी जो पटे रहते तो करण
1: Thank you.

0: जा रहा हूँ, छोटी मोटी रात को मार लुगा लगा इसे वहाँ जा रही करेगा, फिर चुपट हूँ छोटी मोटी रात को मार लुगड़ा लगा इसका वहाँ जा रही करेगा हो तो सब में जा रहा हूँ, मेरे एक पेड़ पर दस्त बहुत बैठा नहीं करेगा हो, फिर चुपट हूँ एक पेड़ पर दस्त बहुत बैठा ना कहीं करेगा हो, ये तो मेरे बाबू के लिए सुनो बेटा सब कुछ हो गया, अगर मेरे पिता को पहले पिता को की जब अपने पत्ता पता है इसमें नहीं पता करना बिसरना अगर तक हम उम्र कार्यक्रम जानते कि सुन लो मदन है मदन जी की सलाह कर वो कर फल सुधर प्रतिक्रिया कुछ कमी कमजोरी पर बात ऐसे इस तरह से जब देना बाप कार्यक्रम पूरा गया लेकिन पूर्वा बेटे बुलाने पर तो बात है मुझे पास से निकल गया तो हमें कुछ सुने की कभी तक की अच्छी सका को पहले लगा
1: कार्यक्रमों से एक हफ्ता लगा के पूरी

से विद्यार्थी के नाम निःशुल्क परिणाम प्रक्रिया तथा खाना वस्तु को खर्च व्यवस्थापन कर बालिका चाहिएगा। यही भाषा आर्थिक अवस्था कमजोर होने का कारण था विद्यार्थी को पढ़ाई रोकना अवस्था हो गए नजर करती वो अभियान शुरू करना चाहेंगे। नगर प्रमुख का गरीब का कारण कौन से बाल बालिका का सपना अधूरा निभाने का उद्देश्य है विद्यार्थी को भविष्य निर्माण में सही कदम चलने पहल का संस्था पंचायत भवन को उच्च शिक्षा लेखित अभिभावक युवा समाज को बास करेगा नगर अध्यक्ष अस्थिमय थालू बटेर बाटे अब वो विद्यार्थी को सपना में आर्थिक अभाव बाधा को निपटने विश्वास के युवा उसका नगर पालिका क्रिकेट फुटबल लगायत का विभिन्न खेल क्षेत्र में प्रतिभावान युवा उनका निःशुल्क आर्थिक तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध करेगा।

0: pues va a ser una bendita jugada para poder la negociación con Tottenham. Y aquí, la cosa que para darnos a nuestra niña, data con la visión a todos los antiguos, porque el proyecto de ética, para el hecho de aquí, se han quedado cuatro.
1: भारतीय मार्केट के क्रेडिट कार्ड अभियान प्रभाव कार्य रूप में विस्तार करता बाकी उन्नीस को खुला उत्पादन इंटरनेशनल नेपाल का साझेदारी में संचालित दस स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग परियोजना अंतर्गत भारतीय को बुरिया मधुबन नगरपालिका और बुरिया ताल गांव पालिका में एक और एक क्रेडिट कार्ड नाम अभियान प्रभाव कार्य ग्रहों को पाल पालिका का शैक्षिक गुणस्तर और शिकार उपलब्धि सुधार करना उद्देश्य संचालन कैदिरक अभियान में से अभिभावक होकर मतदान बायोमेट्रिक प्रत्येक वातावरण निर्माण कर प्रेरित कैदिरबा बाकी उन्नीस को क्लब क्लब बच्चे प्रदेश की सिद्धि के अनुसार अभियान का सकारात्मक प्रभाव स्वरूप चार परिवार का संख्या रेडिंग कर स्थापना करने वाले अभियान सफल बनाए किशोरी क्लब और 25 जना किशोरी अभियान पर सक्रिय अभिभावक अलग साफ संदेश प्रदान करके समुदाय स्तर में पहाड़ना सांस्कृतिक विकास प्रतिबद्धता परियोजना संयोजक उपेन्द्र प्रसाद लागी छाने के अनुसार मधुबन नगर पालिका वार्ड नंबर एक बुद्धि बलिया नगर पालिका को वार्ड नंबर 18 तथा पर्यटन गांव पालिका का वार्ड नंबर 7, 8 और 9 अलग एक और एक रेडिंग कॉलर में ग्रीन ग्राउंड घोषणा करना लक्ष्य लिखेगा और एक घर में से शिकायत संस्कृति विकास परिघना संदेश सहित अभियान संचालन आयोजक अवैध रूप में माटी उत्खनन करना सवारी साधन कर दिया सवारी नियंत्रण में रहता इलाका फरी काले ठोठरी कर दिया से खटल प्रभावित हुई अवैध रूप में माटी उत्खनन कर दिया अवस्था में 13 तो सवारी साधन नियंत्रण में रहता हो प्रभावित अनुसार मधुबन नगर पालिका वार्ड नंबर 7 अंतर्गत संगम बस्ती शुक्र बस्ती क्षेत्र तथा वड़ा नंबर 3 का मुक्त मैया स्थित क्षेत्र बारी में से अवैध रूप में माटी उत्खनन को 13 सूचना के आधार में प्रभावित हुई अनुसमान का क्रम उत्खनन कार्य में परिस्थिति अलग छठ जैसे भी 3 प्रतिदल छठ प्रतिका कुल 13 सवारी साधन नियंत्रण में लेकर बल 13 प्रभावी चलेगा नियंत्रण में लेकर सबको सवारी साधन में आवश्यक कार्रवाई का मधुबन नगर पालिका में घुसेर जिला प्रभारी कार्य कर दिया प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्की जानकारी दिलवाट त्राई क्षेत्र में सामान्यतया ज्येष्ठ का पहला दसरा अठवा से असरा का पहला अठवा समय धानक बिया करना उपयुक्त समय मंजिल वर्ष अनुसार बांसवाड़ी नगर पालिका के प्रमुख गांव का अवस्थित मध्यवर्ती जैविक कृषि सरकारी संस्था विगत वर्षो से जो स्थानीय हवा पानी अनुसार सुविधा धान लगायत का मेडिकल पालिका तैयार संकल अंतर्गत किसान फल उपलब्ध कराई जाएगा अब मध्यवर्ती जैविक कृषि सरकारी संस्था में कई जात का धान उपलब्ध रहेगा यह विषय में सहकर्मी अनुष्ठान मध्यवर्ती जैविक कृषि सरकारी संस्था का अध्यक्ष देव बहादुर भंडारी से बात करने का
2: संस्था
3: Gracias.
2: Thank you.

0: धाराबाजी करना और दोनों की अभांसीय गतिविधि करना गैर कानूनी और वित्तीय अनुशासन विरुद्ध का निंदनीय कार्य हो।
1: हिमित नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो रेडियो प्रभाव एफएम का सहकार्यमा जनहित में जारी संदेश।

0: में सूचना आयरन कैल्शियम आयरनिक सिंचाई स्वस्थ बताई सुरक्षित परिवार
1: दुर्भाग्य को सहकारी स्वास्थ्य कार्य प्रज्ञा से जनहित सहकारी संदेश।

समर्थन कक्षा एघार को पढ़ाई शुरू होने का अनुमान इस वर्ष एक महीना अगले पढ़ाई शुरू होने लगी हो। इस बीच यह वर्ष अगली को ग्रेड वृत्ति परीक्षा पनी

0: sei sussurrare. नवजी को सरकारी संस्था देखिए भक्ति सुब्बा से सभा तथा सुसभा करने संस्था को नया कार्य समिति को निर्वाचन समेत निम्न मिति समय स्थान में होने भाग संस्था का संपूर्ण सेवा सदस्य महानुभावन राय संस्था को सेवा सदस्य परिचय पत्र व नेपाल सरकार ने प्रमाणित करी जारी गरेको फोटो सहित को परिचय खुलने कागजात का साथ उपस्थित भैया अनुरोध
1: मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार सकिन बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म स्थान होम प्यारेस धनगढी तयारी नवजीवन

उसने कहा था आरोप दोनों आयु विनाशों की जानकारी दी को बताए आप संघर्ष में विवाद का विषय अपनी जानकारी दी।

0: की बगीचे संपूर्ण राजनीतिक दल का प्रतिनिधि समाज सेवी जीव भन्दै आमन्त्रण गर्दछन्।
1: स्थान बासमती नगरपालिका एक चेपारो समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे आयोजक बासमती नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बासमती।

कर्मचारी उसका ग्रह मिलने सा भगवान को इच्छा को पता नहीं और वही प्रकाश इच्छा ग्रहण करें इच्छा के केवल ही रक्षा कृष्ण ने समय के ऋषि को आश्रम शिक्षा अध्ययन करने का लगी कृष्ण का भगवान जाने का लगी सभी कार्य शिक्षा अध्ययन नगर

आपने सुनिश्चितता की मदद की होगा तो हम बोले उस प्रोग्राम को साहसिक उत्साहित उसकी हमारे को सुनिश्चित दी गई की गई होगी और चित्त होगी शिशु होगा राधा पुरुष स्वरूप हमारा पौधी स्वरूप प्रिय और बिना के संस्कार चंद्र पति ने हमारा रक्षित कर दिया उसका भी पक्षी में इस प्रकार परम गौरव हुन्छ एक और हुन्छ माता एउटा पुरुष अनेक अनेक नारी को भोग गर्छ पति भनेपछि एउटी पत्नी को हुनु पर्ने होइन नारीले भने पुरुष नारीले भने एउटा पुरुषमा आफ्नो सारा राजस्व इच्छाहरू सीमित गर्नु पर्दैन तर पुरुषलाई त्यो लागु नै नहुने यो मान्यता के पुरुषले बनाएको होइन किनकि म मित्र पुरुषको अलिक बेग्लै खालको मित्र

चावी चाव स्थानिक शिविर में पूर्ण करे एका दिन पाई को तेरे क्षेत्र विचार ने पूर्ण तुम्हें बस कर दियो गंभीर युद्ध में फसी देखिए वो उनका नाम मलाई को शेष का बीमार कर दिन पाए आपको मूल खाते में पूरा हो जो इस पर से आप स्वतंत्र होना सत्य मानो कानून भय को जो वहाँ एक परिवार में ऐसा लगे मुझे कि युवा किसान ने देश पर मुद्रा वगैरह किस तरह मना व्यक्तित्व देखे पाची उन्हें किसान वगैरह आपको मन